0: जोजोलोपा थौ नेपाल सम्ब चिन्चा सौ पी खुद अनलाथो पुनी थो रेडियो नेपाल ख नेना दिस जिरु बिपाके नेपाल भाषा या समाचार। नेपाली कंग्रेस सभापति गगन कुमार थापा बजेट कंग्रेस ता इलानिसे लुनावया चंगु संरचनागत सुधार या गुलेखे विषय क खागु प्याछी जुगु थयादिगुदु वेक्ल वो प्याछी नीति वो ज्यास्या नीति मागु कानुन देके त प्रतिपक्ष हैसियत कंग्रेस ग्वाली यैगु थ्वाथिका दिल मिग नेपाल थारु संज्ञा नापाङ्गु महाधिवेशन या त कखाना दिसे सभापति थापा नेपाली कंग्रेस नेपाय अर्थतन्त्र छु संरचनागत सुधार यामा धैगु खया जयना चङ्गु थयादिल वेक्ल आर्थिक मन्दी वो उपया चङ्गु ठिके जुगु हुनी मो आय दुपी मनुतेगु जनजीवन हाथ्यान जाइगु ली सरकार हगु बजेटे सरकार उमिता उदासीन जुगु लिसना पा बिगुदु वेक्लन हुगु कर या दर्तेस निम्न वर्ग या भुटु शिक्षा व स्वास्थ्य वास्याता नापा अच थाकुगु नेथना दिगुदु। नेकपा एमाले सदस्यता नवीकरण व अभिप्रेरणाया नीति थोहे जेठ विश्व 21 गते यहाँ राष्ट्रिय कार्यशाला या त सङ्गुदु एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासले मेगा पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेल पहासँग पुङको केन्द्रीय सङ्गठन विभागीय बैठक थोको छिनायागु ख कार्यशाला पार्टी प्रदेश व जिल्ला इन्चार्ज प्रदेश पदाधिकारी प्रदेश कार्यालय छान्जे सचिव सङ्गठन विभागीय प्रमुख जिल्ला अध्यक्ष जिल्ला सङ्गठन विभाग प्रमुख जनसङ्गठन या केन्द्रीय इन्चार्ज व नयाँ नापा जनसङ्गठन या सङ्गठन स्वेगु छान्जे व सङ्गठन प्रमुख तेगु बोती दैगु एमाले केन्द्रीय सङ्गठन विभागीय मिगचोङ्गु बैठकको छिनाको एमाले सचिव व सङ्गठन विभाग प्रमुख भानुभक्त ढकाल जानकारी बियादिगु ख सचिव ढकालिया कथ एमाले पार्टी सदस्यता प्रणाली या त मुकन डिजिटल माध्यमसँग हिकेगु ज्यायना चोङ्गु दुसा सदस्यता नवीकरण अभिलेखीकरण व व्यवस्थापन या त प्रविधि मैत्री देखेगु आजु नापा कार्यशाला गोसा गुएतसनागु जानकारी बियादिल। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्पताल जुयादिगुदु वेक ज्वरो वया सेखन चाया मिग सुथे येलया मेडिसिटी अस्पतालले भर्ना जुगु निजी सचिव गोविन्द आचार्य जानकारी बियादिगु ख संयोजक दहाल या त टाइफाइड या लक्षण खने दे धुङ्कानी अझ छुदि अस्पतालले चना वास या के मागु जानकारी हो गुदु। भारतीय उत्तर प्रदेश खुशी नगरसँग उदार यापी पेसो ङेसोमा नेपामी पिन्ता रूपन्देहिया बेलहिया नाका जुसे नेपाल हगु दु उदार यापी नेपामी पिन्ता च्यागु भारतीय बस पाके सुनौली बेलहिया नाका जुसे भैरहवा हया उमिगु धलमुङ्कीगु स्क्रिङ व नेनेकने या नागु जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहिया प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनक बहादुर साइन जानकारी बियादिगु ख वैक्या कथ उदार यापी मध्य बछी मिसा व अनुसन्धान लिपा पीडित याता थतिया भाला कथन छे छयागु व झाँका लावा पिन्ता कानुनी कारवाही नियोजिएको धेयादिल। वैगु आर्थिक दया नीति सरकार हगु बजेट शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधार विकास नीतिगत सुधार प्रविधि या छेला बुला व सुशासन या नेसया त महत्व ब्युगु विज्ञ व स्वपुतै पनि गु विचादु शिक्षा के वोगु एआई या छेला बुला व सूचना प्रविधि या अवधारणा 21 शताब्दी नीति नेपाली मचा मस्तेगु नीति प्रविधि योग्य देखेगु वा त मिले जुइगु विज्ञ व स्वपुतै पनि छ थागु ख यही विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशन या डिन प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल बजेट शिक्षाकै सुपूर्वाधार हो बालाकेको पक्ष त गुले शिक्षा या मनोबल थकाइ गु व सुशासन लिङ्का ते फुसा प्याछी जुइगु ध्यादिल। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पूर्व प्राध्यापक शिक्षाविद डाक्टर मन प्रसाद वागले नेपाली मचा मस्ते त यी कथमा प्रविधि योग्य देखिएको वाता लल हाइगु व गणित विज्ञान प्रविधिसँग भिङ्कीगु भलसाना पापङ्का दिगुदु नेपाल शिक्षक महासङ्घ अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदन शिक्षाकै मुकम बजेट निगु प्रतिशत विनियोजन जुइगु सल हुना वोया चोङ्गु जुसाना आजिगु प्रतिशत झिगु फुटी नी नेगु प्रतिशत जक बजेट को छिगु कना दिल। सरकार अपुगु यातायात सञ्चालन या नीति वैगु आर्थिक दया बजेट सुरुङ मार्ग या त विशेष थ्या बिया त तगु अञ्च उप सुरुङ देखेगु योजना न्याकु देदुने नागढुङ्गा नौ विशेष सुरुङ मार्ग देखे धुङ्कानी न्याकेगु नीति मागु प्राविधिक ज्याजुया सङ्गु दुसा सिद्ध बाबा सुरुङ मार्ग देखेगु याना वैगु असोस निसे सञ्चालन वैगु ज्या याना चोनागु व सरकार अझ मेगु थासेना सुरुङ देखिएगु ज्या न्याकागु बजेटे दुथ्या कागु थागु दु ये तराई मधेस दूरत मार्ग न खुगु सुरुङ निर्माण या झोले दुसा सरकार वैगु आर्थिक दया बजेटे टोखा छहरे सुरुङ मार्ग या तब्यागु सम्भाव्यता अध्ययनयागु विषयता दुथ्या कगु दुसा कर्णालिया जनजीवन या त अफुकेगु नीति जाँजर कोट्या मूल मास निसे जुम्ला या टोपलातक सुरुङ मार्ग या सम्भाव्यता अध्ययन यागु योजना बजेटे दुथ्याका तगुदु खुरकोट चियाबारी थानकोट चितलाङ मजिमटार शक्तिखोर व चिसापानी बबै सुरुङ देखेगु नापाया अध्ययन यागु नेथना तगुदु सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा निर्वाचन या झोले जनता दथी यागु बचत छिलाबुला यागु पाके सरकार योजना चनागु दया दिगुदु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाया न्हापाङ्गु पालिका अधिवेशन या झोले नुवाकोट्या तादी गाउँपालिका पाँचे गोसागु झ्याझोले संचार मन्त्री तिमल सिन्हा वैगु आर्थिक द 2083-84 या नीति न्यवोगु बजेट ल्यामो पुस्ता या सुशासन समृद्धि हिउपायता क घाइगु याना वो गुधया दिल संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा नीतिगत सुधार पाके विकास प्रक्रिया या त लिचो लाकिगु सन्तुलित हो समावेशी देखिगु कुत जुया सङ्गुधया दिसे समानुपातिक विकास सुनिश्चित या त सरकार योजना चङ्गु नेथना दिगु ख बजेट पाके सरकार वैगु नि दया नीति योजनाबद्ध विकास लि दंसा देखागु न वैकलङ्कना दिल महिला बाल बालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी लोकतन्त्र सामाजिक न्याय मानवाधिकार व राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलन नेपामी मिसा तेसाथेङका वया चोङ्गु योगदान गौरव जागु धया दिगुदु च्याकगु राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस लसता मिगे गोसागु ज्यासोले वेक्ला नेपाल संविधान सुनिश्चित यागु मिसा अधिकार सोङ्गु ऐतिहासिक सङ्घर्ष त्यागको योगदान या उपलब्धि जुगु धेया दिल मन्त्री बादी कोछिना प्रक्रिया नापा मिसा तेगु समान पहुँच सुनिश्चित या यता सङ्घु तह या सरकार निजी लागा नागरिक समाज व समुदाय दति ग्वाली कालबिल या मागु धेया दिल राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर मिसा अधिकार या हना व तालागु छेलाबुला नीति मानवाधिकार सेलनाके मागु धेया दिल राष्ट्रिय मिसा आयोगका अध्यक्ष कमल पराजुले संवैधानिक राजनैतिक रूपमा मिसा तेस कागु अधिकार छिला बुला खने दया चोङ्गु व हाठ्या जुसा उकिया त सल पाके निजाके मागु ध्या दिल ज्याझोले उत्कृष्ट छन जुपी मिसा उद्यमी टेता हनानापा शिर्पा ल लागु ख पर्वतीय हाई अल्टिच्युट हुने लेकङ्कया मुस्ताङे न्याना चोङ्गु आर्थिक दया जेठे जेठिया 15 गते तक गुमा विदेशी मनु नपा झिन्सोमा पर्यटक सिगुदु अनया पर्वतीय उच्च हाई अल्टिच्युट या हुने पवित्र धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ दर्शन या त वोपी धार्मिक पर्यटक मध्ये लेक थिया थो मनु त सिगु जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेथङ्गु ख जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्याल्या कथा न्याना सोङ्गु आर्थिक दया जिद ट्या ला ला दुने हाई अल्टिच्युट या हुने लेकङ्कया झिन्सोमा पर्यटक सिगु कनादिगु ख सिपी मध्ये नेपाली पर्यटक पाखे सोमा मिजौँ छमा मिसा नापा विदेशी पर्यटक पाखे हेमा मिजौँ निमा मिसा पि लागुदु धार्मिक तीर्थाटन या नीति मुस्ताङ ओपी पर्यटक फुक्क बारागुङ मुक्ति क्षेत्र व खरबछोङ गाउँपालिकाके लेकन्थिया प्रदेश अस्पताल जोमसमय वासयाकेगु झोले सिगु प्रहरी निरीक्षक बस्याला नेथना दिगु ख नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 21 फुलटेक राखे दुगु नुगु बस्ती छाकासँग एभरेस्ट प्लाई ढोका उद्योगे मि छोया नाश जुगुदु शुक्रबार हिने मि छोए धुङ्कानी मिग जग नियन्त्रण वोगु जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँक्या प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रति प्रतीत सिंह राठौर जानकारी ब्यादी गुख थो मी छो गुली उद्योग फुक मेसिन कच्चा पदार्थ व खापा देखेता हयात अगु झोल नापा खरानी जुगु उद्योग संचालक प्रकाश राणा जानकारी ब्यादी ल थ विश्व सुर्ती जन्य पदार्थ विरुद्ध दिवस हलिन्याङ्क तिथि चेतना जागु चिहासु या नहना सङ्गुदु द पत्तिक मे 31 हनिगु थो दिवस या आज सुर्तीजन्य पदार्थ या छेलासन जुइको स्वास्थ्य जोखिम सुर्ती उद्योग या व्यावसायिक रणनीतिक सुर्ती नियन्त्रण या नीति विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO याना चङ्गु कुत व स्वास्थ्य जीवनयापन वैगु पुस्ता या संरक्षण या नीति माग पला विशेष चेतना बोलङ्की गुख WHO या दुज राष्ट्रिय सन 1978 विश्वव्यापी कथा सुर्तीजन्य पदार्थ या महामारी स व थुकी सन्जुको स्वास्थ्य जोखिम दिके फुसा सिगु व ल्वे या त ध्याने ते फैगु दिवस या कथन हेजाक गुख WHO या कथा आ हलिन्याङ्क च्यास चे छगु अर्ब सुइगु करोट मनु तेस सुर्तीजन्य पदार्थ छेला वया चङ्गुदु व मध्ये एक थे निम्न व मध्यम आय दुपी देशे ब्याचुनी पि ख लिपाङ्गु दके सुर्तीजन्य पदार्थ या छेला मजुया वङ्गु जुसाना अन्ज हलिन्याङ्कया न्यागु मध्ये छमा ल्याम छु न छु कथा सुर्तीजन्य पदार्थ या छेला चोङ्गु तथ्याङ्क लुइक गुदु सुर्तीजन्य पदार्थ या हुने द पतिक चेगु लाख सिबे उपमनुत सिगु दुसा गुकी अथे झिन्नीगु लाख मनुत निष्क्रिय धुम्रपान या हुने सिना चोङ्गु थागुदु आदेशम पिने अबुख इरान अमेरिका व इरान दथिया सम्झौता या त अन्जन ल्य दुगु धागुदु अमेरिकी पक्ष प्रगति यागु सङ्केत याना चङ्गु जुसाना इरानी अधिकारी त्यसमा वार्ता प्रक्रिया न्याना चङ्गु व थिति प्रस्ताव त पाकिस्तान नापा क्षेत्रीय मध्यस्थकर्ता पाके कालबिले जुया सङ्गु धागुदु इरानिया कथन सम्झौता या छौँ महतन्चाको विषय अन्जन सहमति जुइ त ल्यदनी इरान विदेश अधिकार तगु थगु सम्पत्ति त सम्झौता या घोषणा जुइ सात फुकुवा या मागु माग तगु दु तर अमेरिका थो प्रक्रिया झोलिक कार्य सम्पादन या लिधनसा जुइमाको अडान तया तगु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम त्यस धागुदु इरान हपा आर्थिक क्षतिपूर्ति माग या साना आ उकियाता अथे 16 अर्ब डलर बराबर या निर्माण कोष या कथन ह्य बोगुदु थो विशेष अमेरिका छुन ध्वाथिक लिस बिगु मधु इरान चिकौ व पेट्रोकेमिकल लाग्या तया तगु प्रतिबन्ध त वार्ताया झोले चिकेगु माग तगुदु थो विशेष अमेरिकी पक्ष छ प्याछि सङ्केत मवोगु इरान धागुदु आ मौसम या जानकारी थौ लुम्बिनी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश नापाकोशी बागमती गण्डकी प्रदेश या हिमालय पहाडी लगाया छुन्थासे व मध्य प्रदेश नापाकोशी बागमती गण्डकी प्रदेश या तराई लगाया छगुनी गुथासे मल नापा लाप्सा तोय पतिस तसक वा वैगु सम्भावना दु लुम्बिनी प्रदेश तराई लगाया मो थासे वाफे वैगु सम्भावना दुगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापु दु वङ्गु निपे गौस ये सोनि गया क्वाज निङ्याको फुटी सोङ्गु डिग्री सेल्सियस तथि चोङ्गु दुसा थौन हिने ये सोनि गया क्वाज निन हेगु निसे नि गुगु डिग्री सेल्सियस दति चनिगु दुकुमा दु थौ सुथे ये सोनि गले न्याता इजु या सोङ्गु मिनेटे खने दुगु निबा सनिलन हेता इजु या छगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुवन झिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेना सुबह
1: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ। यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ।
2: नागरिक लगानी कोष

ज्यू झिझा मिझा धना चङ्गु नुगा या त लस्तान ज्याकेको कुता नापा वया चना गुदु हिउपा हगु नुग स ज्याचो दुना जी रुबी श्रेष्ठ नापा प्राविधिक पासा उत्तम पाण्डे अवसरा निनामी भाजु मेजु पी चास लसकुस नापा जजल पा दु थौया थो ज्याजो लिछित अल निनामी भाजु मेजु पी थो ज्याजो छिन्सिए सु आइतबापति क चिता इ जुया झिकु मिनेट निसि चिन्छ त इतक वै अले थोए ज्याजो सन्थिथि मतिना जागु मे नाप्ना पा थिथि स्रष्टा थिथि कलाकार फुक विदा पे मनु त्यता फचि फको पहा कथौँ बुनेगुने याना चुना गुदु तर थौँ कने धासा बच्चा वा फेया हुने ढ्याउला छुट्या बर्खा हुने जैन जी उली पहा पिस त तैगु मधु बच्चा देयागु अवस्था नथे जुहा छौँ गुदु तो फुकसित सोया बिचा याना जी उली चाहिँ सता तैगु मरु तर मेगु वाल निसे सतेगु जिगु तातुना नख अले नापा छिनापा तपाईँको सल या तैगु जिगु आशा भलसान ख छ्यादसा छिन्जित माया मतिनायना थिति कथयागु सल्लाह सुझाउ बिहादिगु दु व सल्लाह सुझाउ अवश्य सम्बन्धित निकास निना अवश्य न पुङ्कित आशा भलसाना झिङ्कया सुनागु दु तासेने नामी भाषामा जुपिन थोज्या चौतासी सौ अन्ठानब्बे सय 103 मेगा हर्स नेपाली अङ्क सुना निना दिफु धासा अठ्याना छिस रेडियो नेपाल थिति फ्रिक्वेन्सी त वेबसाइट मिडी वेब पाखिना छिस निना दिफु अलिअलि अङ्क सुना निना दिगु खस www.radionepal.gov.np व www.radionepal अनलाइन पाखे व रेडियो नेपाल या हे फेसबुक पेज पाखे नादिफु नापा थो ज्याजो या त छिस माया मतिना याना फोन या गु खस फोन ल्याक 42 11 721 42 11 736 तासे नि नामी भाषामा जुबी आदा सदकले नापा छि नेवातेगु राष्ट्रिय मेने ने मेन आफ्ना पछि तलस कुसे याना हे चुने दासे थोमे छि नेवातेगु नीति नापा सकल नेपामी तेगु नीति

0: जो निनामी भाषा मेजु पिं छिन दिल दक्षिवे छुचम छि छम दु मे पिं सु मधु दैगु एक मदिना जागु मे ख अवश्य न अले मिज न दै चुङ्गु ख कुमाजु या पिया चुना चुनागु जुल धका धागु ख मेजु न दै चुङ्गु ख ले लका वनि ब्ले वाइ ज्याबले पट्टुपना हाले मटे धका चाहिँ दैदिगु ख माया मतिना दैगु थते ख दास निनामी भाषा मेजु पिं अवश्य न थौ दास झिगु मतिना दैगु थना फोन स्वाफो पाके थगो बिचा पोङ्के गुहे ख अले थे तातुनाया त झेङके त थौ या गु ज्याचो ह्यु पहागु नुग स पाखे जिरुबी श्रेष्ठ प्राविधिक भाषा उत्तम पाण्डे वया चङनागु खस थो ज्याचो या त छि स 9103 मेगाहर्ज पाखे अलि न्याङ्क चना मकु नेपाली न्याङ्क चना नेना दिपु अले अलिया झलाखला देशना त्यादो दका दैगु इलेबिले जिमिता जानकारी न वो गु दु दास नेनामी भाजु मेजु पि छि स हलिया थिथि थासे चुना नेना दिफु अलि न्याङ्को चुना नेना दिफु दास मपा www.radionepal.gov.np/www.radionepalonline रेडियो नेपाल या फेसबुक पेज पाखा छि सन्थो ज्यासो या त माया मति नाना नेना दिफु दास अले थोए ज्याजो या त छि स 42/1121 हो 42/1136 फोन या ना थगु बिचा थगु नुगो खा पुङ्का दिफु अले ठाउँ विषय दास जिम बि गु मधु उख्नु नक्ति नि 15 गते बजेट भाषण जुगु ख बजेट या विशेषण छिगु छुन कथयागु नुगो खवा छुन कथयागु सल्लाह सुझन दुस अवश्य न छिगु ख पुङ्का दिफु चिता पिया जनागु दु दा चाहिँ फोन सब दिदी मापा सा त जिन्दस कुसिया हजुर हेलो हेलो
1: हेलो जजलपा बहिनी जिगलेना ज्ञानेन्द्र
0: हजुर म फु ज्ञानेन्द्र ज्यू
1: हजुर
0: हजुर अलि
1: कृपा गर्ने आटकै मन फु ने कृष्ण छ
0: हजुर एक एक सुभया दु अलि थौ चाहिँ गर्न याना दिगु ख
1: अले छौ छ बजेट पास्ने खुसियाली छ चाहिँ नि अलिकति

0: लसो फ्याफुल्ला रेडियो गेताङ मुगलान लगे अर्थात वैदेशिक रोजगारी री रंगदा डेनमुला गा सूर्य मोक्तान वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङ्ना रोरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल से शोभा चुकेताङ सातला तिरिम दिनिरे आइतबार कुनु चुनुन दुई री प्रसारण लाबन खापमुला फिर्क्या भ्युलिनिसी गेलाबा दुईरी ठगिरी परप्ताजी विसाम पीडित से नेपाली मोबाइल लोलोलो सरकारी निकाय रिनिसी उजुरी पिनबारी खाम्बमला ओसेम वैदेशिक रोजगार विभाग री निसी नुन उजुरी पिनबारी खाम्बमला जुरानु लसे खालैसे ठगी लसम नेपाल प्रहरी लामियो अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी री अथवा नाम्री मोबा प्रहरी गेदिम री निसी नुन उजुरी पिनबारी खाम्बमला खास लसी चुरङमा उजुरी खारङ लसी पिनबा थेन ठगिरी परपताबाका देशे खलङ सम्पर्क लादोबमुला तिला ठगिरी परप्ताबाका देशे सेन्देरिन टिम सेवा याङबारी खाम्बा मुलुम विभताम थेन श्यान्तामगा देरी गे आप्रवासन खेनपो थेन ग्रेन अधिवक्ता सोम प्रसाद लुइटेल थेन लाबाताम तिनीलाई गेताङ मुगलान गेरी थान्छलामला ओसेम वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङ से पिनबान खाबा लोलोलोलो महत्वपूर्ण सूचना थेन साङ्गुरका देनुन तिनीलाई गेताङ रे थानबारी बाङ्लासलामला गेताङ लिच्छा दोना ज्ञानबारी राङ्दा मोइजेनमला निब बैशाख लारी तोङ निश्चुई से ब्ली ग्यार्जब्ली से मेन्दु निचुई कु मिसे फिर्का भ्युली गेलाबारी निबारी बिसे स्वीकृति किन बताम वैदेशिक रोजगार विभाग से पाङबा मोला थेनी गदरी तोङ ब्लीचुई से गिक ग्यार्जा सोम से मेन्दु निचुई ब्ली मिसे फिर्का भ्युली गेलाबारी निबारी बिसे स्वीकृति किन बोला निब दिङला चैत लारी नुन तोङ डुचुई से गिक ग्यार्जब्रे मेन्दु चुई से कु मिसे गेलाबारी निबारी बिसे स्वीकृति किनमा मुबा बिसाम तोङ इचुई ग्यार्जाङासे मेन्दो ब्लिचुई घा छार मिसे फिर्का भ्युली गेलाबारी निबाला स्वीकृति किन्बा बाबा चु तथ्याङ्क च्यामा फिर्का भ्युली निब मेला संख्या बैशाख लारी झन लेबमराङबा मोला चुराङसे फिर्का भ्युली निब मि लेबारी वाङमा लिच्छा ठगिलाबाला घटनाका दिनुन् लेबारी खाम्बा म्राङबा मोला चुरुन ताङ्रे याम्बु उपत्यका अपराध अनुसन्धान गेदिम्से तिलाई दुई याच चेकेन लोलो लोलो ह्युल्डी गेलाबारी पुइसी पिन्ना विभान मेन्दो निस मिग्याम करोड गिक लाख निचुसे ब्लिबिमा लामा टाङ्ग ठगिला जिबिसे पिन्बा उजुरीला आधार रि थेनी गदेता चुङबा मोला चुराङलासी ठगिला जिबिसाम खाराङलासी उजुरी पिन्बा तिला ठगिला जी बिबाला उजुरी पिन्बारी सेन्देरिन थिम सेवा याङबारी खाम्बा मुलुम विभताम तिनीङनिसे गे आप्रवासन खेनपोथेन ग्रेन अधिवक्ता सोम प्रसाद लुइटेल्दा फिर्क्या भ्युली निबारी आम्याङना ठगिरी परप्तामा हिन्न विसाम वैदेशिक रोजगार विभाग थेन जोङ प्रशासन गेदिम्री निवेदन पिन्दो बमुला फिर्क्या भ्युली निसी जिन्मा मुला विसाम गेलाबारी निब मी दो बा ह्युल्ला ग्लेबोन खाङ्री निवेदन पिन्दो बमुला चु निवेदन अथवा उजुरी पिनमा प्रक्रिया रि गेलाबारी लोलोन ह्युलबाङ आरे विसाम मिलुई पोदा जनमञ्च गेन्दुन्से अथवा पिपुल्स फोरम से सेन्देरी रोला से पिनमान खापमुला
1: गेलाबारी निबा मिजा फिर्क्या भ्युली दोषी जिन्बा मुसाम नेपाली मुबा दिम थेमेसेजा निवेदन पिनबारी खाम्बा मुलाकी आखाम्बा मुलाओ
2: वैदेशिक रोजगारको मुद्दाहरु चाहिँ
0: वैदेशिक रोजगारलाई मुद्दा गर्दै त जा सरकारी फौजदारी मुद्दा ताबसे दिम मेमे नाङला खाल्दामा से नुन मुद्दा युबारी खाम्बा मुला तासै नुन सम्बन्धित मिथेन जा लामा प्रमाण गर्दै ताबसे रुदन न्युइतो बसे खाम्दे दुना पीडित मिसेन उजुरी पिनसाम ज्याबा ताब मुला यदि फिर्का भ्युली दोषी जिनमा मि अल्पत्र ताबा थेन उजुरी पिनबारी खाम्बा अवस्थारी आरे बिसाम दिम मेमेला खाजिबै नुन मुलमि से नुन उजुरी पिनबारी खाम्बा मुला
1: उजुरी खारङ लासी थेन तिला तिला तामका दे थान्सी वृद्धबा मुलाउम विवाह तामका दे नुन ताबा मुला ताला उजुरी पिनबारी अथवा निवेदन पिनबारी आखाम्बा मुला ताला निवेदन ब्रिबारी खाल्छी लोप्सी पिन्नाओम
2: अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय
0: बेनाञ्जोङला जोङ प्रशासन गेदिम्री आप्रवासी स्रोत केन्द्र विभाग गेन्दुन ताबा मुला चु आप्रवासी स्रोत केन्द्र सेजा फिर्का भ्युली गेलाबारी निबीमा गाछन् गेलाबा दुईरी ताबारी खाम्बा जोखिम घ्याम खारङ लासी सोबारी खाम्बा मुला फिर्का भ्युली निबीमा गाछ तिले तिला प्रक्रिया गर्दै छोनाला त बुमुला विवरणमा लामन खाला परामर्श गर्दै पिनमन खापमुला उसम खालाइ मिदा ठगी ताजी अथवा खाजीबाइनुन गाह्रो ताजी विषम तिल तिल लाद बुमुला विवताम गर्दै गन्से लप्सी पिन बुमुला चु आप्रवासी स्रोत केन्द्र सिजा निवेदन विवरी थिएन पीडित मिसे न्याय याङमारी तिल तिल लाद बुमुला विवरणमा बिनन ताम गर्दै लप्सी पिन बुमुला उसम सेन्देरिन निवेदन बिर्सिनुन पिन बुमुला यदि जाहेरी दरखास्त पिन्दोबा ताजी जकी ग्रिनुन खाला मुद्दा मुला प्रतिवादी दा सजाय पिन्दोबा खाला मुद्दा मुला मुला बेसाम थेराङमा दुई रिजा जाहेरी दरखास्त पिन्दो बमला थेराङमा जाहेरी दरखास्त जा ओकिल सेन लादो बमला थेराङ लासी ओकिल सेन जाहेरी दरखास्त पिन्दो बासे टाङ्गा फाबारे आखाम्बा कादेता जा मन्से सेन्दरी कानुनी सहायता अथवा थिम रु लासी पिनमान खाप बमला थेराङमा दुई रिजा गन्से जाहेरी दरखास्त पिनमा थिन कानुनी परामर्श गति
1: खाजीबाई पीडित से कानुनी कारवाही लावारी विषय छेवा मुला प्रक्रिया तीजी विषाम फिर्किया भिल्डी गे लावारी निवा बिमा गाछा पिनबा टाङ्गा राङ्दा याइसी खाबा हिन्ना कि प्रक्रिया तीवा दुईरी लगाव ताबा जतिनोन दुई खर्च ताजी थे अनुसारला क्षतिपूर्तिनोन याङबारी खाम्बा मुला कि खास तिला ताबा मुला चुतामरिजा
2: यो वैदेशिक मुद्दा चाहिँ हामीले सरकारवादी
0: फिर्के भिलिनिसी गेलावाला मुद्दा त जा सरकारवादी फौजदारी मुद्दारी थान्नान खाबासे मुद्दाला प्रक्रिया तीवा दुईरी टाङ्गा फादो बमला पीडित से उजुरी पिनमाथेन डाङथेन मुभा प्रमाण गर्दै वैदेशिक रोजगार विभाग थिएन थेलिछा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लिखासी बयान बकपत्र ग्याम बेनन ताम्पाङसी पिन्दो बमला उसेम राङथेन मुभा बेनन प्रमाण गर्दै पिन्दो बमला चुराङनु नसी पीडित से ध्यान पिन्दो बा ताम्तिल मुला विषाम प्रतिवादीला सम्पत्ति मुला विषाम थेदा रोक्का लसी पिन्छाम लिच्छ निर्णय लसी जिम्मा लिच्छ थे सम्पत्ति ग्याम असुल उपरला बढी सजिलोता बमला उसेम पीडित से क्षतिपूर्ति याङमारी खाम्बा ताम ठिमसेन व्यवस्था लसी पिन्ड बमला फेर्क्या भिलिनी बा दुई रिफा बा टाङ्गाला गाँचु प्रतिशत टाङ्गा जा क्षतिपूर्ति याङबारी खाम्बा ठिम मुला उसेम फिर्क्या भिल्डी गेलाबारी मि अल्पत्र ताप मुला विषाम थे पीडक ग्याम फिर्का बिहुली निबथेन खाबा दुरी लाग तब टाङ्गा किनमा रिनुन जेल सजाय लामा टाङ्गा किन्जी लामा सेवा शुल्क किन्जी विषम थेराङ लासी टाङ्गा लामा किनमा मि अथवा मेन पावर कम्पनीलाई इजाजत पत्र खारेज लासी पिनमानुन ठिम्सो बमला थे तपाईँ थेराङमा मेन पावर कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेज तबारिन खाम्बा मला
1: व्यक्तिगत रूपले श्रम स्वीकृति किन्सी निभा कादेला हग्री जा तिल ताब मुला
2: व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति
0: खाम्दे दोनाजा व्यक्तिगत फिर्का भुल्डी गेलाबारी निभाला श्रम स्वीकृति किन्सी फिर्का भुल्डी गेलाबारी आनी सम ज्याब ताब मला खाम्दे दोनाजा संस्थागत हिसाब से नितो बमला चुतामला अर्थ तिल हिन्न विषाम संस्थागत हिसाब से गेलाबारी निभा हिन्न विषाम फिर्क्या भुल्डी गेलाबारी मिपुइबा कम्पनी गादी थिएन छोङखेन गादी सिजा धरौटीला टाङ्गा थान्बा ताप मुला यदि खाबरेरी खालै तिलै गाह्रो ताजी विषाम मुद्द युदोबा ताजी विषाम थेनुन धरौटीला टाङ्गा से याङसे याङतोबा क्षतिपूर्तिला टाङ्गा किनबारी खाम्बा मुला ओसेम फिर्क्या भुल्डी गेलाबारी विशेष श्रम स्वीकृति किन्सी निभा मिसेजा वैदेशिक रोजगार बोर्डला कल्याणकारी कोषी टाङ्गा योगदान लाभ ताप मुला थे योगदान न टाङ्गा फावालन आधारले तिलाई गाह्रो ताजी विषाम उद्धारला सि बाबा अथवा तिलाई कारण चाहिँ मिसिनुन सिजी विषाम थेला शिव लुइरो नेपाली बाबा लुइला बिमा लाभ ताप मला जाजा कोला गदे त छात्रवृत्ति पिनमा राङमा ताम गदे चु ठिमसेन लासी पिनमा मला थेसेलामा खाबरेरी तिलाई अप्ठ्यारो ताजी विषाम वैदेशिक रोजगार बोर्डला कल्याणकारी कोष क्याम लामान खाला सेवा सुविधा गदे किनबारी खाम्बा मला ओसेम जसै गेलाबारी निभाला श्रम स्वीकृति आकिन्न फिर्के भिल्ली गेलाबारी विषय निभ मुला विषाम जा थे मिसे खाजी बैनुन खाला सुविधा गदे आयाङबा मला व्यक्तिगत रूपले श्रम स्वीकृति किन्सी निभाका देशेन कल्याणकारी कोष क्याम सुविधाका देखिन मरी खाम्बा मला तसैनुन व्यक्तिगत रूपले निभाका देशे जा बिनान छेला जिम्मेवारी राङसेन किन्दो बासे खालैसे ठगिला जीवी समेनुन तिलाइनुन सेवा सुविधाका दे याङबारी आखाम्बा मला
1: पीडित से तिला तिला ताम सेवारी थिएन गोबारी आखाममा न्याय पिनबारी गाह्रो
0: अर्को तामजा खालै से ठगी लसम क्षतिपूर्ति याङमा मुला कि आयाङमा मुला पीडक कादेता खाराङमा खाल्ला सजाय ताब मुला खलङ्गरी खाराङ लसी उजुरी पिन्दो मुला बे बिबतामेनन था त बमुला ओसेम प्रमाण गते खारंगलासी थान्दो बमुला टांग खारंगलासी पिन्दो बमुला बिबतामेनन तिलाइनन था आयंग मगादे ngai siap siti bomula theta base rangla radio getangyam ngada tila tampangi manma mula bisam khlainun mi firka beli gelabari niban mula bisam tanga pinma duiri bangyam chicken pinmari ngala moizin mula bangyam tanga pinmari akhamsam firka beli nibari bisi pinma tanga hinna bibatam prashta gobare khamba kagaj sodo bomula bangyam tanga pinma sutainun firka beli gelabari nibari pinma hinna bibatam prashta tanalas chicken pindo bomula osem firka beli gelabari puiba mi athaba company se rangni then khajibainun duiri व्हाट्सएप मेसेन्जर अथवा खाजी बैनन माध्यम ग्याम च्याट लाभा थिएन भिडियोरी ताम लाभा मुला बिसा मेनन थे सुरक्षित थानबारे गाला मैजेन मला खामदे दोनाजा ठगिरी पर्व आतापाला लासी गे लासिगो यदि ठगिरी पर्व तब मुला बिसाम ढोलङ्गाई विवरङमा बेनन प्रमाण गादी थान्सी उजुरी पिन्छाम पीडित छ न्याय याङबारे खाम्ब मुला उसेम नाङ्गार ठिमखाङसे क्षतिपूर्ति पिन पुङमारी नुन सजिलो ताप मुला दान्दिल्ली छ दुई रिजा व्यक्तिगत रूपले श्रम स्वीकृति किन्से फिर्का भ्युली केलाबारी निबारी खाम्ब मुला विषय लामन सामाजिक सञ्जालले लोलो लोलो सूचना थिएन जानकारी गादी ग्याम प्रेरित लापन खापु मला व्यक्तिगत रूपले श्रम स्वीकृति केन्सी केलाबारी निबारी आताबजा हिन्नु नाइन निबारी ताप मला निब दुई रिजा जकी प्रोफेसनल कम्पनी थिएन दान्डी जो मि राङसेन बेनान ताम गोबरी खाम्ब मला नाङ्गर खाजिबेनुन खाल समस्या तासम थेदा राङसेन छाङनालाबारी खाम्ब मिगादे निसाम ज्याब हिन्न तासेनन जो मिसे नाङ्गर खाजिबेनुन समस्या ताजी बिसाम थेदा छाङनालाबारी राङसेन आखाम्ब लिचा स्यान मिला रो किन्दो ताप मुला नि हो थेराङमा मिसे जा संस्थागत हिसाब से निसाम
1: राङसे सुङबा अनुसार फिर्क्या भ्युल्डी निसी जिन्बा लिछा गे लावा धुइरी खाजीबैनन समस्या खाजी बिसाम थेसे सेन्देन रिन थिम रो याङबारी खाम्बा ताजी आइनो
2: बोजिसुरु जारको सिलसिला
0: फिर्क्या भ्युल्डी गे लावारी निबा ताङरे खलाई मि ठगेरे परब ताजी बिबाला अर्थ तिल हिन्ना बिसाम जस्तो कि राङसे टाङ्गा पिन्से जिन छैनन् फिर्क्या भ्युल्डी पुइसे आपिन्जी बिसाम चोरी पाङबा अनुसार तलब आयाङजी ओर्से निसी राङजा ग्लोब चुङमारी परब ताजी अथवा बाध्यकारी गे लादोबा ताजी फिर्क्या भ्युल्डी गे लाबारी निबा दुईरी नहातोबा जतिनुन समस्या गादे मुला थे समस्या गादे जाजा अथवा ग्रेन तिल्दामान मुसाइनन् थे सम्बन्धी राङदा सेन्देरी थिम परामर्श अथवा रोतोजी बिसाम पिपुल फोरम अफ ह्युमन राइट्स विभाग गेन्दुन ग्याम याङबारी खाम्ब मुला राङसे सेन्देरी सेवा किनबारी जा गन्ना गेदिम रिखासी फोन लासी थेन वेबसाइट रि पुइखासिनुन रो किनबारी खाम्ब मुला राङनी त गन्ना गेन्दुन ग्याम व्यवसायको उकिल गदेसेन सेन्देरी सेवा पिनमान खाम्ब मुला
1: न्याय याङबारी रेङबा दुई लगाप्ताबारी खाम्बा हिन्ना कि विवाह मान्छी मिलमिलाप लावा अथवा राङ राङनोन डिक्पा एनोन राङबान खाबा मुला थिम अनुसार प्रक्रिया छेउनालासी थिम अनुसार नोन कारवाही लावा हिन्ना बिसाम पीडित से निभा धुरी लावा खर्च थिएन क्षतिपूर्ति एनोन याङबारी खाम्बाडी आइनो
2: मेलमिलाप चाहिँ अब अहिले त कानुनी हिसाबले मेलमिलाप
0: थिम अनुसार मि मेलमिलाप लाबारी खाम्बा नोन थिम मुला मेलमिलाप लाबा तामे ठिकान हिन्ना तासेनोन जकि ग्रेन खाल अपराध लाभा काते दाजा मेलमिलाप लासी राङ राङनोन डिक्सी सिपिन मजा नाङ्गर देपेन थेराङमा घटना गादे तासिन टिपा थिन स्यान्दा ठगी थिएन अपराध लसिन टिपा रिनुन खाम्ब मुला डिक्नुन डिक्पा हिन्ना बिसा मेनुन राङला समस्याला प्रकृति से आसी जस्तो कि फिर्का भ्युली के लाभा दुरी खालासे ठगी लाभा हिन्ना बिसाम ठगी लाभा टाङ्गाला छ्याम्रे नाचु प्रतिशत क्षतिपूर्ति थिएन खाबा निबा दुरी लाग तब खर्च नुन थिम अनुसार याङबारी खाम्ब मुला थे ठगी लाभा मिदा जरिबना थिएन जेल सजाय गोर्गिनुन तब मुला तासैनुन लामाराङमा मिगदे लामन तामगादे गोबरे आखाम्ना डिक सिपिन मजा पीडित मिसे ज्यानलासी न्याय याङबारी आखाम्बा थेन पीडक दा ज्यानलासी कारबाही लाबारी आखाम्ब मुला चुराङलासी च्याङना च्याङना टाङ्गा किन्से डिक्सिपिन माझा प्रतिवादी त फाइदा तप मुला न्याय याङनुन तोब मिसे न्याय आयाङबारी खाम्ब मुला धन्दे गणित तामलाबन मुबा गे आप्रवासन खेनपो थेन ग्रेन अधिवक्ता सोम प्रसाद लुइटेल गेताङ्ग्याम फेप बेमाङा छ गुर्किक जानकारी वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङसे बेनान स्थानीय तहरी गे लबन खाबा गे थुतबन गदेला विवरण अपडेट लाबारी मोइजेन लापमला चु तामला स्यान जानकारी तोसम बोर्ड लोनखाङला वेबसाइट www.feb.gov.np च्याबारी अथवा 1141 रे फोन लसी गोबारी खामचला तापमला चुनुन जानकारी गदेला छ्याम छ्याम्री तिनीलाई गेताङ न्यामेनुन फेसिनिबा दुई तासी जिन्मा बोला गेताङ मुगलानलाई गे अर्थात् वैदेशिक रोजगारीलाई फेरि राङ्लातीलाई सल्लाह सुझाव थिएन प्रतिक्रिया गदे मुला बिसाम गनीलाई इमेल ठेगाना welfare@febgov.np थिएन info@febgov.np इमेललाई बारी राङ्दा मोइजेन मलाई तिनीले गेताङ यान्छुबारी राङ्दा लामा लामान थुजे छे खाबा सातारी छार विषयरी छारनोट गेताङ बासी खासेलामुला थे दुई दोना गेताङ सेङबारी रोलाबा नाना इन्दिरा थिङ थेन गा सूर्य मोक्तान्द बिदुन्छुगु लासो फ्याफुल्ला
3: नेपाल टेलिकमको 4G

0: ए रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमै केन्द्रीय समाचार सुनल जाए। राष्ट्रसभासँग निर्वाचन सम्बन्धी दुटा विधेयक पारित भेल अछि। सभाक आजुक बैठकसँ प्रतिनिधि सभासँ सन्देश सहित प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिल संशोधन विधेयक 2083 आ मतदाता नामावली पहिल संशोधन विधेयक 2083 बहुमतसँ पारित कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने बैठकमे प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहक दिशसँ कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री सविता गौतम ई विधेयक पारित कयल जाके अलग अलग प्रस्ताव पेश कयने छलथि। राष्ट्रसभाक दोसर बैठक सोम दिन दिनक 1:15 पर बैसत। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लिपुलेख आ लिम्फिया धुरा सीमा समस्याक सम्बन्धमे सरकार कूटनीतिक नोट पठाओल आ वार्तासँ समस्याक समाधान खोजबा सन काज भऽ रहल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठकमे सांसद लोकनि सङ्गक प्रश्नक उत्तर कार्यक्रममे नेकपा एमालेक सांसद पद्मा आर्याल द्वारा पूछल गेल लिपुलेख सम्बन्धी प्रश्न प्रधानमन्त्री शाह विवाद समाधानक लेल भारत आ चीन दुनू देशमे कूटनीतिक नोट पठाओल आ पेलायत सङ्ग सेहो एहि विषयमे बातचीत आगू बढ़ाओल जानकारी देलनि। एहिना श्रम संस्कृति पार्टीक सांसद आर एन राय सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसवासीक व्यवस्थापनमे कहिया धरि ई हैत से पूछल गेल प्रश्नक उत्तरमे प्रधानमन्त्री शाह सुकुम्बासीक समस्या जल्दी समाधान करबाक लेल सरकार लागि पड़ल बतौलनि। प्रधानमन्त्री शाह 35 वर्षमे नहि सकल काजक परिणाम 35 मिनटमे नहि खोजबाक आग्रह करैत सुकुम्बासी समस्याक व्यवस्थित समाधान करबाक लेल सरकार आगू बढ़ल बतौलनि। एहिना सांसद रायक सहकारी सम्बन्धी दोसर प्रश्नक उत्तरमे प्रधानमन्त्री शाह सहकारी संचालक सभसँ उठाओल पैसा पीड़ितके फिरता भऽ रहल आ बाजारमे हल्ला भेल जकाँ सरकार रहल बात सत्य नहि रहल बतौलनि। एना राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीक सांसद खुशबू ओली विद्युत महसूलसँ भेट सम्बन्धी पूछल गेल प्रश्न प्रधानमन्त्री शाह एखन देश विद्युतीय युगमे जा सकबाक अवस्था नहि रहल आ एखने देशभरि विद्युतीय चूल्हा खाना बनाबयवला लेल भार नहि थामि सकबाक कारणे एहिके व्यवस्थित बनेबाक लेल कर लेबाक व्यवस्था कयल गेल बतौलनि। प्रधानमन्त्री शाह प्राधिकरणक क्षमता विकास करबाक लेल सरकार पैसाके चाहल आ एहिके लेल विद्युतमे 5% भ्याट लगाओल स्पष्ट कयलनि। एहिना भादव 23 आ 24 गतेके आन्दोलनके सम्बन्धमे गौरी बहादुर कार्की आयोग आ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनके सम्बन्धमे नेपाली कांग्रेसक सांसद अर्जुन नरसिंह केसीके प्रश्नमे प्रधानमन्त्री शाह सभ प्रतिवेदन सभके अध्ययन भऽ रहल आ क्रमशः कार्यान्वयनमे जेबाक बात बतौलनि। एहिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण आ सुशासनके सम्बन्धमे राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीक सांसद कविन्द्र बोरला कोटीक प्रश्नमे प्रधानमन्त्री शाह सरकार कार्यकालक पहिल वर्षके भ्रष्टाचार नियन्त्रण आ सुशासन स्थापनाक वर्षके रूपमे लऽ सम्पूर्ण ध्यान एहि पर केन्द्रित कऽ रहल बतौलनि। प्रधानमन्त्री रोस्टममे पहुँचला पर सभामुख डोल प्रसाद आर्याल दलगत रूपमे प्रश्न रखबाक लेल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसके समय उपलब्ध करौलाक बाद सांसद सभ युवराजुलाल ऐन महर नेमापति कयने छलथि। एहिना नेपाली कांग्रेसक सांसद अर्जुन नरसिंह केसी प्रश्न रखबाक क्रममे सेहो प्रधानमन्त्री आकस्मिक रूपमे समय लऽ कऽ प्रश्नोत्तर नहि कऽ सकलाक भेलाक बाद नियमावली अनुसार पुनः प्रश्नोत्तरके कार्यक्रम रखबाक मांग कयने छलथि। प्रतिनिधि सभाक सांसद लोकनि अविरल बरसातक कारण जनतामे पड़ल समस्या महगी आ बेरोजगारी सहित समसामयिक विषयमे सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठकके सुनै समयमे सांसद वासना थापा बजेट कर्णाली वार्षिक शिक्षा स्वास्थ्य आ बेरोजगारीक समस्याके प्राथमिकता नहि दऽ सकल कहैत शिकायत कयलनि। सांसद विश्वराज पोखरेल बजेटमे 2 करोड़ लगानीक कृषि व्यवसाय शुरू करयवला किसानके 40% धरि अनुदान देबाक व्यवस्था स्वागत योग्य भेल बतौलनि। ओ ग्रामीण क्षेत्रक किसान के लेल 2 करोड़ अत्यंत भारी लगानी भ सकबाक बात बतौलनि। सांसद बुद्ध रत्न महर्जन ललितपुरक गोदावरी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 डोकू छाप रिंग रोड सँ लगभग 11 किलोमीटर दूरी में रहल सड़क में आई सेहो जीर्ण सड़क आ पुल निर्माण नहीं भ सकला पर जनता के शास्ति भोगय पड़ल बतौलनि। सांसद भरत कुमार स्वर आबयवला बजेटसँ सेती लोकमार्गक 259 किलोमीटर टीकापुरसँ तकलाकोट मानसरोवरके राष्ट्रीय गौरवके योजनामे समावेश करबाक मांग कयलनि। सांसद भरत बहादुर खड़का 2079 सालमे गेल भूकम्पक कारण रोटी जिलाक पूर्वी चौकी गाँव पालिका सहित किछु ठाममे दन आ धनजनक क्षति भेल उल्लेख करैत एखन सेहो एहि गाँवपालिकाक जनताक घरबार विहीन रहल कहैत सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद भूमिका श्रेष्ठ धनकुटाक सहित भूमि गाँव पालिकामे अन्हर बिहारक कारण पुल भाँचला पर टूट गेला पर विद्युत सेवा बेर बेर अवरुद्ध भेल कहैत समस्या समाधान कैल जेबाक धारणा रखलनि। सांसद मन माया बेक गरीबी कारण दलित समुदाय शिक्षा से वंचित होब पड़ल बतौलनि। सांसद भरत गिरी, भूमिका लिम्बू सुब्बा, भीम बहादुर, भीम कुमार बुढ़ामगर, विदुषी राणा, बालावती शर्मा, मनीष खनाल, महेंद्र बहादुर शाही, मातृका प्रसाद यादव, माधव बहादुर थापा, मोहन आचार्य, मोहनलाल आचार्य, यशोदा कुमारी, यज्ञ बहादुर बोगठी, यज्ञमणि न्यूपाने, युवराज दुलाल, रचना खतिवरा खत्री, रजनी श्रेष्ठ, रंजू न्यूपाने, रमेश कुमार मल्ल, रमेश प्रसाई, रहबर अंसारी, राजकिशोर महतो, राजीव खत्री, राधिका रमतेल, रीना उप्रेती, रुकेश रंजीत, रीमा विश्वकर्मा, राम लामा, रुक्मणी देवी कोईराला, रेखा कुमारी यादव, रेणुका काउचा आ मदन कृष्ण श्रेष्ठ देशक समसामयिक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। राष्ट्रसभाक आजुक बैठक प्रतिनिधिसभा संदेश प्राप्त प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पहिल संशोधन विधेयक आ 83 मतदाता पहिल संशोधन विधेयक 83 पारित कयलनि। प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री बालन शाहक दिशा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम ई कयल जाक प्रस्ताव कयने छलथि। अहिना वही बीच राष्ट्रसभा में महिला समन्वय समिति गठन भेल अछि। सभा के आजुक बैठक में अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल प्रतिनिधित्व करबासन दलक समन्वय में महिला समन्वय समिति गठन करबाक लेल सभा में कयल गेल प्रस्ताव के सभा सहमति देलक अछि। ओ राष्ट्रसभा में नियमावली अनुसार लैंगिक मामला में समान धारणा बनेबाक लेल एहन धारणा सबके बहस प्रेमी में अनबाक लेल सभा में प्रतिनिधित्व करबाक लेल सब दलक समन्वय में महिला समन्वय समिति गठन कयल जानकारी गौरौलनि। अहिना राज्यसभा का आजुक बैठक में सांसद लोकनि तराई में रहल पेयजल समस्या, कर्णाली में भरल विद्युत आपूर्तिक समस्या, जनजी आंदोलन के विषय में आयल मानव अधिकार आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन सहितक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। सांसद लोकनि मधेश में पेयजल के समस्या विकराल बनत गेल तथा 400 फीट में पानि नहि अयबाक कारणे आब व्यक्ति पेयजल आ भोजन के लेल सेहो समस्या भेल बतौलनि। सांसद लोकनि बजट से उद्योग संचालन के सहायतक विषय नहि समेटल गेल कहैत रोजगारिक सृजना का गरीब किसान मजदूर सुकुम्बासिक समस्या समाधान करबाक लेल विषय बजट में नहि आयल बतौलनि। कर्णाली में सहज रूपे विद्युत आपूर्ति तथा कम वोल्टेज के विद्युत आपूर्ति कारण ओहिठामक जनता असहज समस्या भोग रहल आ सरकारक ध्यान आकर्षण करबैत विद्युत के सहज आपूर्तिक व्यवस्था करबाक मांग कयलनि। सांसद लोकनि सुकुम्बासिक समस्या समाधान में सरकारक ध्यान जयबाक, जेएनजी आंदोलन के विषय में आयल मानव अधिकार आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन कयल जेबाक, सभा में सांसद सब द्वारा उठाओल गेल विषय में सरकार के जवाब देल जेबाक कहैत सभा सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। राष्ट्रसभाक दोसर बैठक काल्हि सोम दिन दिनक 1:15 पर बैसत। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले आब वाला आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट महत्वाकांक्षी नहीं रहल बतौलन अछि। आइ अर्थ मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वो बजटक आकार छोट नहीं भेल बतौलन। विगत के वर्ष में बजट अयलाक बाद बजट निक भेलाक बावजूदो कार्यान्वयन होयत कि नहीं ई बहस छल, मुदा एहि बेर एहन अवस्था नहीं होयत। बजट महत्वाकांक्षी नहीं अछि, वांछित सीमा भीतर बजट आयल अछि आ एहि के कार्यान्वयन कऽ कऽ छोड़ब ओ कहलनि। हुनका अनुसार अगला आर्थिक वर्षक बजट प्रतिक्षेपित जीडीपी के सापेक्षता में 28.5% मात्र थिक। अर्थमंत्री डॉक्टर वागले स्वयं सन 2014 से नेपालक बजट निर्माण में संलग्न रहल उल्लेख करैत सन 2015 के भूकंप पश्चातक बजटक आकार बढ़ लागल बतौलनि। भूकंप आगू हमरा सभक बजटक आकार जीडीपी के तुलना में औसत में 25-29%, वास्तविक खर्च 22-25% होइत छल ओ कहलनि। भूकंप पश्चात बजटक आकार बढ़ल, कोनो वर्ष जीडीपी के तुलना में बजट के आकार 37% धरि पहुँचल छल। सरकार अगला आर्थिक वर्षक लेल 21,24,34,00,00,000 बराबर के बजट सार्वजनिक कयलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी उप विदेश मंत्री सारा बी रोजर्स नेपालक पर्वतारोहण में अमेरिकी प्रविधि महत्वपूर्ण भूमिका खेल सकबाक धारणा रखलनि अछि। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास आइ काठमांडू में आयोजन कयल गेल द एसेंट समिट में उप विदेश मंत्री रोजर्स अमेरिका आ नेपाल बीचक नव प्रवर्धन, पर्यटन तथा प्रविधिगत सहकार के और सुदृढ़ बनाओल जेबाक बात पर जोर देलनि। ओ अमेरिका हिमाल आ विशेषकर सगरमाथा विश्वभरिक साहसिक पर्यटक तथा पर्वतारोही के प्रेरित करैत आयल बतौलनि। ओ सन 1963 में अमेरिकी पर्वतारोही जिम ह्यूटेकर नेपाली शेर्पा नाभाङ गोबुङसँग सगरमाथा आरोहण कयल ऐतिहासिक क्षण स्मरण करैत एहिसँ नेपाल अमेरिका सम्बन्धके थप मजबुत आ सम्बन्ध बनाओल उल्लेख कयलनि। हुनका अनुसार 6 दशकसँ अधिक समय सेहो दुनू देश बीचक सम्बन्ध पर्यटन, शिक्षा, व्यवसाय, प्रविधि आ जनस्तरके आदान प्रदान मार्फत निरन्तर मजबुत बनैत गेल बतौलनि अछि। उप विदेश मन्त्री रोजर्स अमेरिकी कम्पनीसँ विकास कयल सुरक्षा प्रणाली, सञ्चार उपकरण, ड्रोन प्रविधि तथा अभियान व्यवस्थापन सम्बन्धी आधुनिक प्रविधि हिमाली पर्यटन क्षेत्रक लेल उपयोगी रहल उल्लेख कयलनि। रेडियो नेपाल सँग सुन्न छलो मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।
1: मनोता सिना चंगो दु तर ठो लट टोटी फै
2: छि ठो लट टोटी गु खसा थौ हे गोप्पे ओ ताम वाक नेनी गु सेवा क्विटल्यान्ड 1132 स्वापु तया दिस
1: ठो सेवा ज्याकु इले का फै
2: वाचाका दिस धुम्रपान ओ सुर्तिया लट टोटी त नेनी गु सेवा क्विटल्यान्ड 1132
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र टेकुए।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने दिए सांसदों के सवालों के जवाब। कहा, भ्रष्टाचार नियंत्रण और सुशासन बहाल करने पर केंद्रित है सरकार का पूरा ध्यान। सीमा समस्या का समाधान वार्ता से ही निकालने के हिसाब से काम हो रहा है, प्रधानमंत्री का कथन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रथम संशोधन और मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सभा से हुए पारित। आगामी आर्थिक वर्ष का बजट महत्वाकांक्षी नहीं है, अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले का कथन। और इसराइल ने की दक्षिण लेबनान स्थित ऐतिहासिक किले पर कब्जे की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार सुशासन स्थापित करने और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए दृढ़तापूर्वक काम कर रही है। प्रतिनिधि सभा में सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष को भ्रष्टाचार नियंत्रण और सुशासन का वर्ष बनाया है। सीमा विवाद के विषय में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा मुद्दे के समाधान के लिए भारत और चीन को कूटनीतिक नोट भेजा गया है और वार्ता के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास जारी है। सुकुम्बासी समस्या पर उन्होंने कहा कि सरकार स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रही है और दशकों पुरानी समस्या का समाधान रातों रात संभव नहीं है। सहकारी पीड़ितों के विषय में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों को लौटाई जा रही राशि सहकारी संचालकों से वसूली गई रकम है, सरकार की ओर से नहीं। विद्युत महसूल पर लगाए गए मूल्य अभिवृद्धि कर के बारे में उन्होंने कहा कि विद्युत पूर्वाधार विस्तार और प्राधिकरण की क्षमता वृद्धि के लिए ये व्यवस्था की गई है। इस दौरान संसद में प्रश्नोत्तर प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने नियमावली के पालन और प्रधानमंत्री के उत्तरों पर आपत्ति जताई। राष्ट्रीय सभा ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक और मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक पारित कर दिए हैं। कानून मंत्री सुबिता गौतम ने कहा कि समावेशी प्रतिनिधित्व से जुड़े सुझावों को निर्वाचन कानून संशोधन के दौरान संबोधित किया जाएगा। बैठक में महिला समन्वय समिति का भी गठन किया गया। वहीं सांसदों ने मधेश में पेयजल संकट, कर्णाली में विद्युत आपूर्ति समस्या, सुकुम्बासी मुद्दा और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि आगामी आर्थिक वर्ष का बजट महत्वाकांक्षी नहीं बल्कि यथार्थपरक और क्रियान्वयन योग्य है। उन्होंने बताया कि बजट का आकार अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 28.5% है और इसे राज्य की क्षमता और संसाधनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अर्थमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विद्युत पूर्वाधार निर्माण के लिए विद्युत क्षेत्र में कर लगाया गया है। परराष्ट्र मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा प्रतिनिधि सभा में नेपाल भारत सीमा के संबंध में दिया गया वक्तव्य दशगजा क्षेत्र के अतिक्रमण और सीमा पार भूमि उपयोग अधिकार से जुड़ा था। मंत्रालय ने आज जारी विज्ञप्ति में कहा कि प्रधानमंत्री शाह की टिप्पणी का संबंध सीमा निर्धारण के दौरान अपनाए गए स्थिर सीमा सिद्धांत के कारण उत्पन्न उस स्थिति से है जिसमें एक देश के नागरिक दूसरे देश की सीमा के भीतर स्थित भूमि का उपयोग या खेती करते हैं। विज्ञप्ति के अनुसार नेपाल और भारत के बीच सीमा स्तंभ निर्माण, मरम्मत, दशगजा क्षेत्र में अतिक्रमण तथा सीमा पार भूमि उपयोग का अभिलेख तैयार करने के लिए दोनों देशों की तकनीकी और सीमा संबंधी समितियां सक्रिय हैं। परराष्ट्र मंत्रालय ने यह भी बताया कि लंबे समय से रुका तकनीकी समिति का कार्य फिर शुरू हो चुका है और संयुक्त रूप से तथ्य संकलन का काम जारी है। मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री शाह का संसद में दिया गया ये बयान कि कुछ स्थानों पर भारत की भूमि नेपाल की ओर हो सकती है तकनीकी अध्ययन और सीमा पार भूमि उपयोग की वास्तविक स्थिति के संदर्भ में था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए बुद्ध परिपथ निर्माण परियोजना का समझौता हुआ है। विश्व बैंक के सहयोग से संचालित इस परियोजना के तहत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, स्थानीय रोजगार प्रवर्धन और गंतव्य व्यवस्थापन के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। करीब 12 अरब 66 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना 5 वर्ष तक चलेगी और कपिलवस्तु, लुम्बिनी सांस्कृतिक, रामग्राम तथा देवदह नगर पालिकाओं में निवेश किया जाएगा। अमेरिकी उप विदेश मंत्री सारा बी रोजर्स नेपाल दौरे पर आई हैं। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास के अनुसार वे काठमांडू में आयोजित असेंट समिट 2026 में मुख्य वक्तव्य देंगी। इसके अलावा उनके नेपाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के पूर्व प्रतिभागियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। इसी दरमियान उप विदेश मंत्री रोजर्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल स्वतंत्रता पर भी संबोधन देंगी, जिन्हें खुले समाज और आर्थिक समृद्धि की आधारशिला माना जाता है। अपने दौरे के दौरान वे ऐतिहासिक पाटन दरबार स्क्वायर और अमेरिकी राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोष अंतर्गत संरक्षित 7 विरासत स्थलों का भी भ्रमण करेंगी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। मेडिसिटी अस्पताल द्वारा आज शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और वे उपचार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या के लक्षण दिखाई देने के बाद उन्हें शनिवार सुबह ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के अनुसार चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान उनमें निमोनिया का संक्रमण पाया गया है। आवश्यक स्वास्थ्य जांच पूरी कर ली गई है और उपचार शुरू कर दिया गया है। मुस्तांग के मुक्तिनाथ मंदिर में पिछले 4 दिनों से धार्मिक पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सामान्यतः प्रतिदिन लगभग 4,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन गुरुवार से प्रतिदिन 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। पड़ोसी देश भारत में अत्यधिक गर्मी के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद होने से भारतीय श्रद्धालु पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। नेपाल में भी पिछले गुरुवार से लगातार 4 दिन का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण मुक्तिनाथ में दर्शनार्थी पर्यटकों की संख्या बढ़ी हो सकती है। प्रबंधक भूसाल ने बताया कि कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी होने से आंतरिक तथा भारतीय पर्यटकों का आवागमन बढ़ा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनकी सेना ने दक्षिणी लेबनान में स्थित ऐतिहासिक और रणनीतिक ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। इस जगह को शाकिफ के नाम से भी जाना जाता है। रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज ने यह भी कहा कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली सेना के जमीनी अभियान का विस्तार हो रहा है। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल और एक्स हैंडल पर लिखा, ब्यूफोर्ट की लड़ाई के 44 साल बाद और ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली यानी सन 1982 में हुए पहले लेबनान युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में मनाए जाने वाले दिन IDF के सैनिक एक बार फिर इस किले में लौटे और वहां इसराइली झंडा फहराया। इसराइल कात्ज ने कहा कि इसराइली सेना ने लेबनान में अपने अभियानों का विस्तार किया है। सेना ने लिटानी नदी को पार किया और ब्यूफोर्ट पर कब्जा कर लिया। इसराइल रक्षा मंत्री ने गैलिली क्षेत्र को बस्तियों की रक्षा करने और सेनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदुओं में से एक बताया है। BBC सेवा के मुताबिक रविवार सुबह न्यूज एजेंसी APF ने इस किले की तस्वीरें ली है। इन तस्वीरों में किले के ऊपर इसराइली सेना का झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आसपास के इलाकों में गोलीबारी की आवाज भी सुनी जा सकती थी और धुएं का गुबार भी देखा जा सकता था। इससे पहले इसराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर अपने कब्जे के दौरान इस किले का इस्तेमाल एक अड्डे के रूप में किया था। यह लगभग 2 दशकों तक चला और साल 2000 में समाप्त हुआ। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने दिए सांसदों के सवालों के जवाब। कहा, भ्रष्टाचार नियंत्रण और सुशासन बहाल करने पर केंद्रित है सरकार का पूरा ध्यान। सीमा समस्या का समाधान वार्ता से ही निकालने के हिसाब से काम हो रहा है, प्रधानमंत्री का कथन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रथम संशोधन और मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सभा से हुए पारित। आगामी आर्थिक वर्ष का बजट महत्वाकांक्षी नहीं है, अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले का कथन, और इसराइल ने की दक्षिण लेबनान स्थित ऐतिहासिक किले पर कब्जे की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: फोर्जी LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
5: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
6: नेपालको समावेशी आवाज।